0: Mai kiga maurese mi bavani foi maurese
1: te mihar me fahaga kore mandane te tiris vanali un teringe
0: do tiris hatar vanali un teringe do
1: tiris hatar van de ta ema tiris hatar vanali un teringe do as fah kore mandar te befulung mi duha guligen ane kobato mi te befulung rawa fahar kata ke
0: alun me getan kole tigu mi muddat kar har kata rawa mi te mi do algan me mi gau mi ni tarika dira sakura kawmi markaza ehin kameng rawawa febe mireya ehin bima mi fannuge liunteri kameng no waki tarika age daira age befulna ki ga ampatallume den efa alugon menge farato masakke ta fashani mi anna hafta ga ekkam kan alugon men miati den miyedu den duha gule go tun mi liu alugon menge bayane nerifa mianna hafta ga maurasenge babawa ngato baawa fa miaharu ge september october galunneng e babawang liu foinnio ma liu mi ekulawalo ma gule masakkatu baddalome de alunneng e ummida ki e masakkatu baddalome ge terein fotel liu mu ga foteng ekulawalo mu ga samal kan denvi kankama ekankamu ge terein alugunmen daskuram mi ए मसकत बदल मग तेरे अलगन में फिलहाल तो दस कोगें किहने तो कोम्बाय का कोम में उम्र फुरे का कों का लफो ते कोंगो ते का तोड़ने रे निया मिकं कं ए कमें एगे देंग ए आए की का अलगन में मियां ना हरा मी लियों तेरी कम मंग कन्यानो मी महासमाए बावंगे बा मियां ना हरोगे कुरी खोलंग अलगन में मिहार दिवे ही बाहुगे दुआ मी बावणी हम महासमाए मी दिवे ही बहंग होरी गोंचे हुन तका दिवे ही बस थरकी कुरवेणी इतुरा कोंगो तक तो मिकं कमुगे मच्च करदा सुशाला ने हम गौमी फेमरे ग बावंग
1: नेंते विदाळु वि हरकत हो गमी बावेर वणी कोंफरत हकों तो
0: मी
1: अमास कुरणी कोंफरत तक तो
0: लियुन तरिंगे कंत तंग अमास मी कुरणी हम लियुन तरिक म शगोरी फरत तक शामी हारो से कमगा तिब्बे बे फुल्लंग अलगन मेंगे मी फंगे कुलवा लियो मगे मी मसकत बतल मतावत मेर ए एकम को मिहार कोनो मिदन नवा है सितंबर अक्टूबर ग अलगन मेंगे मी जागे दतिकन हुरगतों अलगन मेंगे मरामा तो कन कन नुमेति अलगन में सकले फसकल लंज होनी एक फहुंग अलगन में मी बलनी मी अन्ना हरा मी बलनी यूनिवर्सिटी तक गुलिगें ए इल्मी मुअससा तक गुलिगें इल मुअससा तक तेरेन दिरासा कुरमा ए दिर हुरी मसल त फाहक कुरमा एकीगा कोबातो एकन कमन हुरी हल्लु तकी कोबातो हुशालो वा हुशालो वंता की दिरासा तक कुरवा बेफलो एक तेरेन एकन कम के मच्छन अलगन में गेन मुलि कम मुलि तावले मुलि राज्यतो एको गदा तमी बहुगे कन कम का हल्लेन हो देनी एहे महिसा मुन कन ने अलगन में कल मोस अमी एकम का गुले इसारा एक मोस साय का गुले के मसके तफशान
1: दे मिहार हम दे मी बहुं मी बस पेनों कर मग हम वर बड़ो गंजे हो मेंगे बकोरे मतिवे मी मिहार के मी लजीला दे तो हम एको दिन के मी मी एको दिन ना मी रंगलो मी मिलियन तेरे कम के दुआ हाँ गुड़वा गें कौन कौन कहा लगान तत्त्व के तो रेफोने
0: एको दिन ना मियादा गुड़वा गें ना नो एको दिन ना मी मोबारा था गुड़वा गें अलर में स्कूल तो गे मजमून वाहक लियो मुंगे को दिन ना मी खंत तक के कोरी दें अलर में मुंगे ये तो मेंगे बे मी मैं बफ़ेन ना मुदा रिसंगे फरे अपलो को दिन ना वाहक देख के मुंगा साफ दिवे बहुम वाहक दक का एको दिन ना दिवे ही बहुम विष्णं दस को देवं विष्णं कम्मस्वर का फुर्सत देवं नेरों अलग ना की गबुल कुरवनी हमा मडु मडुं एको दिन के हित्तकुगा दिवे ही बहुं कंकमा विष्णा दिवे ही बहुं जुमला इबारे बस कोशारो आशा का तो मुझे फुर्सत होली पेने मैं हर वागुत के अलगन में ना बाईफार ए फुर्सत हुए इसको दिन ना नो देवी बेर के बहाकुं एको दिन ना मुआमला कुरवी एको दिन ना दिवे ही बहुं विष्णा ने फुर्सत नो देवे नहीं है
1: दें हम मैं दुआ हाँ गुलवागे थोड़ा दिन फाह को लवाने कौन कमेता
0: अलून हमा अलगन के ऐ दुमा की हमा दिवे हिलियों तेरिंग अमाने तेरी कमाए की एबे फुलंगे मसक्के कुरियर कुरिया गेंदवा मिया दबरवे

से बप्पा मम्मा किया माहे रक्कुलमी रक्कुलये रेडुकुलये नुकिया से बोलू।

0: शुक्रिया।
1: मिजलसा का कोरे देंगो नानी मरहबा देनम गे गोतुं डिपार्टमेंट ऑफ डेंटिस्ट्री एंड ओरो फेशियल सर्जरी गे ईश्वरिया कंसल्टेंट इन ऑर्थोडोंटिक्स डॉक्टर नदीमा रशीद गे वाकफुल देखवुं। डॉक्टर नदीमा रशीद,

أنا كاسامة وراهي جامري طلبة چالا فمبادل قولي مهار غدي غار غدي ساليس أمينة تهيغا فمني مي ديوه راجي غادو ديوه راجي غادو مي غدي غوري مي غندري مياد كيهن الشو مي مياد كيهن الشو مياد كيهن الشو يكي مي دوهي ديرولم غهن غادي ومهم حقان تتا تجرباتا هنسا قول لان قولي غندا شو يكي ديالوغ من كي آتو غا نين اچا كبوري آتو غا هوري نيومتا كا سامال كان دي شكر وري كما يكي هيتان امي برو همچا يومي لبيني كما كي هما kuriya diun ummi daayku hite me kura kamakum bes ufa hodan das kuru ei emme putti veri gota ka waani inge den har minna ki hamai ka riiti kamatta ka alamari ge rakka kure pa duniye ge undago takun durgawa naazuku echchenu den har minna ki dagan fada varuga da bai baruga dakang den mana koddem wegen dagade mi buni ge den dagada kanwa ani ta do ekam dirulum ge hunu ga da dosta ka kurimate wa nutanawas kamuge harukashi hamalata kon aharmen ge hibwaru wani baruga da fa adi balikashi we kudikudi wegen diuman inkar ko aharmen mi wani nuguda fa da baruga da bay ka we fa ehma nuguda azmek ga bades hibwara ko kuriya dewe to masi ke kuram wa ne hori ha baweni me singe me choga me gulala me bagda kala baweni ge turun ade hama tiktok ge baweni me swani hama mi azum ga kuriya ta inge dirulum ga tibage arama ofa weri kan gelliken da ऐ तिबा बालिका शुकोल्लो मेंनो एक बदल के ऐ तिबा के किबाग वा हकीकी काबिल कमा साबित कं हाम को दिन मल्ली बेफुर्सते केतेरी कमा मरुकोल्ला में जाएंगे कुरीमते वा बुरदनाय कुस हिबनाय कुने वालंचे अधे हंदां कुरंचे हंदां आ कुरंचे गहे के मोतं एमे फुंको हरुलानी एमे हरु बिमुगा हरु बिंताओ का मिहारु दानी है मार्ग में बच्चे ने ऐहा वरुगा दें हम हरु लबाले वे तो मस्सी के कुरं ऐह भी मा उम्मीद कुरं हम औरी हाँ बैवरी में स्मी वाह कता खाए को उम्मीद आ कुराने कम उम्मीद आए को कुरिया दामानी उम्मीदु कंडाला फिया दें हम औरी हाँ कमे मी निमिगें दिए इता दो उम्मीद की ता औरी हाँ विसे चकी इबरा उम्मीद के तेरी कम कामयाबी दो के तेरी कमाए को मस्सी के कोगे कामयाबियाँ हमें अलग बना मिवासिल वे बनी ये कामयाबियाँ हमें दियो मं हम ही बनाए को मस्सी के कुरमवाने को में पैवरिया कुस को में बेफ्लोकुस को में मी है गवेस दिरुलुम के दातुरा इंतहान ता तफातो इंतहान ता कुर मत लांचे मिसाल को सोशल मीडिया एम फ्रेंड ना पूरी हम दिरुलुं तक दिमागे दिरुलुं अलाकियों में की हिन्नुतनस वाकम का वेदान ही तुरु हिन्नुतनोस वों कम का वेदान है कम को दिमागे हगीगे वाद वेरी कम की दिमागे ये के नफ्से ए अब दिस अलगमें आकुरंचे आजुम आकुरंचे उम्मीद आ को कुरिया दानचे वे ये आजुम आ को कुरिया देवी जिया अब दिस अलगमेंगे हितुगा ehen kankama mi deifawa ehen befulun e kurago e maamole maarangale hitan erumge badulga tima e kurave emme rangalaka kankan ko kummi daa kukuri adiun emme budi veri waani hitu garul veri kama hasad veri kankan kuluma ki hamilla hita devi hani ayaka waani ehema e kankamun duru waami ehen mi na maaf kuruma ki emi hunna taka kura kamenun ei amilla nafsan hin hamache ma minivankan hoda adinuma kura kame amillen hamati maage hin hamache humen ei abadis me meenmiya ko meene kame ke ehen hitan erumuge badal ga abadis aharen em merangal she kangkan kurani kuriya dani ummi daayaku ge egota kuriya dia merangal wan emar gina wahaka dekhije do mere mi haro den hiwani mi har den ne malu ma ham yan hen daam vi dakkan je wahaka tan ebori baawar timaage si hatar sha nafsani dole ho kam wargo de kudde adi ufa veri confessioni timaage amille etire hashin tima lobi waadi hin hama je hon बहादे कहला रंगलु मिहु नायकु वगुतु हे दो कुरुम किस रंगलु कमे अब दिस रंगलु खाना कां इसकं एब देंचे रंगलु खाना वेस केविगे पुरी हम सिहाते गमे होरे वनी पुरी हम सिहाते गहोरे के अलगु मेंना उम्मीद आयकु कुरिया मिदे वनी हांदा बाटन छे कमे मिदिरी उलम की मसले नो मसल तके नो कुरिया दांगले फिया वाला का मा वाणी गे
ema mirege cho mi adu kihine mirege cho me ti nema ka me ngas den hama ummi daya kori abe plus kori da mi re ginan hama me baddal vi sate kan sate ka aga ti be furun ema e sate ka aga adi samat ti bene kam ge ummi ka ani kas baddal vairo sate ka aga ti bene kam ge ummi ka mi vakela ni de mirege cho ne mala fa mirege cho su fe di shafi de ফোনম গমিয়েতির বিদনি ইফা এমবে প্রসম বরং আমান রাকাতরি উফাভেরি রেকেদ মুমবাকি বলনি আসসালামু আলাইকুম।

0: हंगार
1: अंगार दो मिंद्र कोरी इकार गड़ फन रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूँ आदि बुद्ध दो होगेरे मिंदम बार गड़ तेरी हूँ
0: हंगार
2: हम एकनी दिवे राज्य क्याडू
3: दुम्फत के स्माल कुमार की आहार में गे दारिमाम के सिंहता वेश असर कुआ कमे फिरहनु के दारिमाम के सिंहता कुरा असर तक बलारो दारी नोलीबुंग कहल कंतता एकांग एगुता दिमावान यह स्वाभे की दुम्फत के स्माल कुमार की फिरहनु के दारिफानी नोनी स्पाम काउंट के मेंबर दाकुरा कमे आदि स्पाम के फेमवर नोनी क्वालिटी दाकुरा कमे एम स्पाम के मेंबर दावेफा एगे फेमवर दम वेज कम गवन्या दारिमाम असर कुमार की गह कमे हम एगुता दुम्फत के स्माल कुमार की अंगहनु नवेस दारिमा उमगे मसाता कुरिमतुमगे फुरसत इतुरुकरा कमे ಕಮ ನಿರಾಸಾತಾ ಕುಂ ಫೆರ್ನಂಗೆ ಬಹುರೇ